सजिलेल्या आयो नयाँ एलजी एसेन्सियल सिरिज अब किफायती मूल्यमा रेफ्रिजरेटर वाशिङ मसिन एसी को कम्प्लिट रेन्ज 10 वर्ष को वारेन्टी सहित 0% नो कस्ट इएमआई नागरिकता भए पुग्छ हरेक घरको खुशी घर घरमा एलजी एलजी लाइफ गुड.

0: राखा वरिष्ठ पेट छाती मुठ रोग तथा दीर्घ रोग सुगर थायराइड प्रेसर रोग विशेषज्ञ डाक्टर सरोज थापा प्रत्येक महिनाको चौथो शनिबार
1: वालिङ सिटी पोलिक्लिनिक प्राली वालिङ 8 सेन्जा फोन 063 440 594

0: कि ब्रो?
1: कहिले?
0: मिल्दैछ कि ब्रो?
2: राम्रोसँगलाई मिलाइदिए.
0: राम्रोसँगलाई गाइदिए.
1: भाषे
0: मुच्छे.

अब जब कार्यक्रम को क्रम में राखी फेसो अंतिम व्यापारिक विश्राम संगे पुनः स्वागत करते कार्यक्रम का बस्ती का आभार का आज हमें कार्यक्रम का बस्ती का आभार का कई सुंदर व्यवसायी में रखे हमी दुवाहर समक्ष सुमधुर खाल का भाका कार्यक्रम में जोड़े अगाड़ी बढ़ा थे दुवाहर को रोजाई में रहकर भाका हमी कार्यक्रम में जोड़े दुवाहरसंगे सहयात्रा करते अब हमी कार्यक्रम छुट्टी जानुपर्ने समय में आईपुग छहरमाज रही रहने ये सुमधुर खाल का भाकासंगे सहयात्रा करने मनुदापुदे छुट्टी जानुपर्ने हुआ आगामी श्रृंखला में रहकर विशुद्ध नेपाली लोकगीत भाकासंगे सहयात्रा करने विश्वास दिलाऊ कार्यक्रम समय अवधि भर सुनेर साथ दिन्ने संपूर्ण में धीरे धीरे धन्यवाद को शब्द व्यक्त करते जगह जाते यहां समक्ष सुमधुर खाल को भाका सीम सीम पानी रहो बैमानी आयु सुमधुर खाल को भाका छोड़े आज के व्यवसाय मिदा विशेषकरी कार्यक्रम में सहभागिता जनाउनुहुने सम्पूर्ण में धीरे धन्यवाद का शब्द व्यक्त करते आज के व्यवसायवा मिदा हु ज्ञान सूचना और मनोरंजन का सुंदर करहला रेडियो आदि खोला यहां बाकी पल शुभ रहोस् मंगल रहोस् नमस्ते जय गीत जय संगीत।

0: सुनिए सुनिए हम
1: इस समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़ पांच घरे कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: रेडियो आदि खोला।

0: चारको आधिकारिक शोरूम अथोराइज शोरूम आरती उज्जल शूज हाउस वालिङ आठ नयाँ बजार चोकैमा गोली स्टार कम्पनी का पार्टी शूज स्कूल तथा अफिसियल शूजहरू स्पोर्ट्स शूज लेडीज जेन्ट्स शूज तथा जुत्ता चप्पल को होलसेल एवं खुद्रा बिक्री गरिन्छ।
1: गोली स्टार को अथोराइज शोरूम आरती उज्जल शूज हाउस वालिङ आठ नयाँ बजार चोक
0: प्रोप्राइटर बोधराज रेग्मी र सरस्वती रेग्मी
1: मोबाइल 9849918921 र 9862639390।
2: बारिस्टा ट्रेनिंग पूरा गरेपछि जर्मनी र युएईमा 100% जॉब प्लेसमेंट
3: अमेरिकन हॉस्पिटालिटी एकेडमी सर्टिफाइड
2: 2026-27 का लागि बारिस्टा ट्रेनिंग मा भर्ना खुल्यो।
3: कफी बनाउने सिप सिकौ, करियर आफ्नो उज्यालो पारौ। डाफे हॉस्पिटालिटी एकेडमी, सिप सिकौ, विश्व जितौ।
2: एसई वास्तु भन्दा माथि उत्तीर्ण अब बन्नुहोस्। प्रोफेशनल बारिस्टा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एएसए सर्टिफिकेशन र इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप सहित जर्मनी र युएई मा 100% जॉब प्लेसमेंट।
3: कॉफी को सिप, विदेश को अवसर, डाफे संग करियर को नया सफर। डाफे हॉस्पिटालिटी एकेडमी, सिपेटुंगा पोखरा।
2: संपर्क मोबाइल 9800103260 र फोन 0167571866।
3: डाफे हॉस्पिटालिटी एकेडमी, सेपिंग हॉस्पिटालिटी लीडर्स।

0: समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिकै रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको पांच घरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
1: ठाउँ।